प्रभात, ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती 105.8 MHz पर आज मंगलवार है। सप्ताह 1948 के वर्षात माह की तिथि 22 अनुसार 12 मई सन 2026 इस समय सुबह से 5:58:45 हो रही है। आरंभ होती है अब हमारी प्रातःकालीन सभा। सभी श्रोता

दिन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे, वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने

तंत्री पर पीछे पर बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष के विराम से लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल दमू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।

ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

40 मिनट और 15 से 45 मिनट के आपके सुनाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं ऐसी लागी लगानी। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनिल जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे से भूले भी तेजी 7:30 मिनट से सुने अगर हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं

No, I can go ahead and go with this. कुछ लोग ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनने का कार्यक्रम आज के संकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा।

सेना कैल्सिनिया की बीमारी डॉक्टर आशा प्रमोद करते थे राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत प्रतिकर्ता अनिता पटेल। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे रंग तरंग। दिन में 12:05 से सुनेगा।

वचन 35 में से संध्या रंजन सुबह के 45 में से संगीत करेगा। शाम 7 बजे से आपको सुनाएंगे जयमाला। शाम 7:45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनेगा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनेगा विश्व प्रेमी सम्मेलन, लेखन मगन मोहन खन्ना का, निर्देशन मीना नाथ का। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 मिनट से। आपके लिए

माता कहते हैं कि कठोर आचरण से शुद्ध होकर आत्मज्ञान की आग में जल रही है। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर

ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सीकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें। शत्रुघ्न कुबेर अंधकार भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदे थे उनके साथ शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबेर पर जोर से एक लात मारी। स्त्री चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबेर फूट गया। शत्रुघ्न ने छोटा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी झलक ने उसे शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। परिश्रता और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कलकलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। तभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण कभी सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत कर खुश हुई।

0: के कोलाहल में मन अक्सर ही विचलित हो जाता है। मन के इस विचलित प्रकाश को जब अध्यात्म के क्षेत्र से गुजारा जाता है तब भक्ति के विविध रंग उपस्थित हो जाते हैं। संगीत सरिता का प्रवाह आज से कुछ दिनों तक भक्ति के सागर में समाहित होगा। इन कड़ियों में भक्ति के अनेक भावों, भक्ति के अनेक रंगों से हम परिचित होंगे। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है उन्हें, जिनके गाय भजन संख्या हमारे जीवन होती है। हम सबका बचपन समृद्ध हुआ, हम अलौकिक संसार में पहुंच जाते हैं तो हमारे भीतर भक्ति समर्पण और जीवन दर्शन की लौ जलाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी शाम चौरासी घराने के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा के सुपुत्र हैं। पिछले कई दशकों से अपनी गायकी के माध्यम से श्रोताओं पर रस वर्षा कर रहे हैं। भक्ति संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अब हम तबला वादक आशीष झा जी का स्वागत कर रहे हैं।
2: नमस्कार।
0: हारमोनियम वादक अजय जोगलकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद ममता जी।
0: श्रोताओं, जैसा की श्रृंखला का नाम है ऐसी लागी लगी, आज हम इसी विषय से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी लागी लगी जो भजन हम सबके मन में है और जबान पे है, जब भी भजन का जिक्र होता है तो शायद हम ये भजन सबसे पहले गुनगुनाते हैं।
1: ऐसी लागी लगन की प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार की है कि मैं कभी कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ या कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ तो कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है, मुझे देखता है और ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है। वो ये बताना चाहता है कि मैंने आपको पहचान लिया। तो मेरे नाम के साथ और मेरी उपस्थिति के साथ ऐसी लागी लगन कुछ इस तरह जुड़ गया। ये गाना कैसे बना इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि 1977 में मैं न्यू जर्सी अमेरिका में एक अपने मित्र के घर लंच खा रहा था। उनकी पत्नी भी थोड़ा गाना गाती थी तो उन्होंने, जब मैं खा रहा था खाना तो एक छोटी सी बुक मेरे हाथ में दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे, और मैं वो लेफ्ट हैंड से वो एक एक पेज पढ़ता जा रहा था, राइट हैंड से खाना खा रहा था और एक पेज पे मेरी नज़र टिक गई और उस पर लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन। इंदिरा देवी का लिखा हुआ है भजन है और मैं इसको पढ़ता रहा तीन चार बार खाना खाते खाते, और बाद में जब खाना खत्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मेरा हारमोनियम लाइए और मैंने उनको वो गाना गाते सुना दिया। मतलब खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन चुकी थी। तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि उसी क्षण में उस गाने की रचना हुई जिस रचना से मुझे सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है, और मैं चाहूँगा कि वो भजन मैं आपको यहीं गा के सुना दूँ। हमारे साथ आशीष जी अभी जी बैठे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज विविध भारती में आप दोनों हमारे साथ हैं।

0: इसके हाँ मैं बिल्कुल खूब मन से बुक हो गई हूँ मेरे से छोटा थी अब अलग सब जैसे हैं कि मीरा माई की एक हफ्ते रचना का जिक्र हो तो कैसा रहेगा
1: जरूर मीरा माई ने तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और उसमें प्रेम तो है लेकिन उसके साथ समर्पण भावना इतनी बड़ी है जो आज तक लोग सीखते हैं

लो गोविंद मोल, इसका अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है। तो अगर गोविंद मोल लिया है, खरीदा है, तो उसका कोई मूल्य होगा, हमको भी बता दो, हम भी खरीदना। तो मीराबाई बता रही है भक्तों को कि आप भी गोविंद को खरीद सकते हैं और उसका मूल्य क्या है ये बता।

0: वैसे तो सच कहा जाए तो अनूप जलोटा को जरूरत ही नहीं है कि अपने तालीम के बारे में बताएं या घराने के बारे में बताएं, लेकिन संगीत की एक परंपरा रही है अपने घराने के बारे में चर्चा करना। तो हम चाहते हैं शाम चौरासी आपका घराना रहा है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
1: तालीम की तो बात यह है कि अभी सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूँगा। पंजाब का प्रसिद्ध घराना है शाम चौरासी घराना, यहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक हुए सलामत अली नज़ाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान चले गए वहाँ रहे, लेकिन हिंदुस्तान में मास्टर रतन यहीं पर रहे हरियाबाद पंजाब में, उन्होंने लोगों को सिखाया, उसमें मेरे पिताजी ने उनसे सीखा और मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो शाम चौरासी घराने की जो विशेषता है वो इसकी स्पष्टता है, इसकी क्लियरिटी है, इस शब्दों की बहुत क्लियरिटी होती है। जो भी भजन या ख्याल हम गाते हैं उसमें एक एक शब्द इतना साफ होता है कि आप उसको भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है। रात को समझ में आई जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ तक कि सरगम भी इतनी स्पष्ट होती है, इतनी साफ होती है कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो शाम चौरासी घराने की ये जो खूबियाँ हैं ये हमने अपने गाने में उतारी और अपने लाइव म्यूजिक में भी उतारी, जो भजन गजल में गाता हूँ उसमें भी उतारी, जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आँख बंद करके बिना कुछ पूछे सुनते जाए आपके भजन और आपकी बातों को, लेकिन वक्त का जो दरिया है बहने लगता है तो चला है इजाजत लेने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप जी आपका धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।
2: ऐसी आप सुन रहे हैं श्री अनूप जलोटा से।

सेवा देश की सुरीली धड़कनी प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले जिसे जी। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में स्वर्ण सुंदरी फिल्म के गाने के साथ। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है आदि ना।

主，是别的什么机关？Recording के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224006662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की स्वरूप और कार्यक्रम चल रहा है भूले जिसे सुने साहेब ने जानी का लिखा और एस डी वर्धन का संगीत लिखा।

ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਿਆ ਸੁਣਨ ਕਰ

दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित उत्पादन से लेकर उपलब्धता और इससे भूख का खतरा बढ़ जाए। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा कम हो लेकिन ज्यादातर खराब कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है।

0: tutti caduti per mai. Se ne lega nuca andai, atti sovracobalare le fai, vuole di tre di. Carlos, se vuoi sabato, se vuoi, vedi parti per te.
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीद अपन सभी आप सुन रहे कार्यक्रम बोले विषय जी और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुबारक बेगम लता मंगेशकर और साथ में की आवाजों में बारह बड़ी फिल्म से कुमार बारह बंकी हैं गीतकार और संगीतकार।

सुनने के बाद देश की सुरीली भक्तों के लिए आपके नए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के लिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में नाइट इन लंदन।

0: हम 10 साल जयपुर में फिटर किया तो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। टीम का जवाब नहीं मिले, मुझे उसके तरह से इन चीज़ों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया। मेरे पास जाने की जुड़ान बाकी पर इंडिया हो जाए बाकी और जब जी जी के साथ शुरू हो गए कि किसी शहर के साथ नहीं हुआ।
1: आपकी माँ

सेवा दी श्री सुधीर निभावकन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। वक्त हो गया छोटे ब्रेक का,

श्री शरीर धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम है राहिका के लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फर्ज फिल्म का गाना लिखा है आयन बख्शी ने और संगीत कमर है लक्ष्मीकांत प्यागराई।

सुषमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिसकी सबके एग्जाम वॉरियर के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCERT आयोजित रहा है

notícia.

मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश

लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया।

इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। रोशन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।

0: श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, आसान नहीं लगेगी।
0: एनसीसी आयोजित कर रहा है परीक्षा, जिससे

मरीजों की सेवा में लगी रहती है। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक

मरीजों की देखभाल करना नहीं होता बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती है और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती है। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती है। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण

सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती है परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

Okay.

से पूरा घर सौर ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा और इधर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, इसलिए सरकार हम लोग को देगी, इससे बिजली उत्पादन होगा।

करके तो उसको आपको शरीर चक्कर आना, बिजी होना, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गॉश से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट।

跟那个

que eu dependi.

साल जयपुर में किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ग्राम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल

Thank you.

यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर

की कीमत उपलब्धता के दबाव के

soba yari ikirayi.

गुजरा जबक संपूर्ण रामायण सुनहरी नदी भीम का जादू जंतर मंतर वीर भीम सिंह सती सावित्री वीर घटोत्कच बालक ध्रुव रानी और लाल परी जय संतोषी मास्क

ஆமா.

तशीच मी तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करें हमारा नमस्कार अंगार। श्रोताओं कुछ बेहतर कार्यक्रम के तहत

Teşekkür ederim.

जहां मन की सोच मन की बात के लिए ठीक

फिल्म सपनों, दोस्ती और सच्चे प्यार की तलाश पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म कहानी पर आधारित फिल्म दिल तो पागल है के बारे में। यशराज फिल्म डायरेक्टर तभी बनी थी ये फिल्म सन 1997 में। दिल की बातों को समझना समझाना आसान नहीं होता है, श्रोताओं दिल की बातें दिल ही जाने। दिल नादान है, पागल होते रहता है, न रहता है होश न रहती है।

बिल्कुल पागल है कि गीते को शुरू से सजाया था प्रशंसा ने, शब्द दिया था आनंद बख्शे ने। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे यश चोपड़ा। फिल्म में अभिनय किया शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय।

प्रोग्राम जो हर इंसान को जिंदगी से जीने के लिए इंस्पायर करता है और यही एहसास को बेहद खूबसूरती के साथ फिल्म

स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब किसी मर्ज की दवा

पहचान ही बल्कि सेवा संदेश और समर्पण का हिस्सा नाम है और ये परिभाषा उस नर्स के लिए है जो सचमुच सेवा को ही अपना धर्म अपना कर्तव्य मानती है। दर्द पर मुस्कान बनकर देखी जाती है तो रात्रि की नींद त्याग कर किसी की जिंदगी बचाती है। उन देवदूत

पिंड को ही बदल दिया। केंद्र की प्रेरणा ने महिलाओं को नर्सिंग क्षेत्र में आगे आने की प्रेरणा भी दी। आज देखा जाए तो पुरुष वर्ग भी इस पेशे को अपना रहे हैं। समाज भावना की कमी भी हो सकती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ही 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा यानी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। प्रोफेशन को बढ़ावा मिले और सम्मान मिले, साथ ही नर्सेस के योगदान को हम याद कर सकते हैं।

आज के वर्तमान समय में स्वास्थ्य से जुड़े लोगों की अहमियत काफी बढ़ गई है। अभी अभी हम नर्सेस की बात कर रहे थे दोस्तों। CSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य रिपोर्ट ये बताती है कि देश में बीमारी इलाज के उपयोग और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च कितने होते हैं। और जब रिपोर्ट जारी की गई तो पाया गया कि हर 8 में से शहरों में 15 तो गाँव में लगभग 12% लोग बीमारी की श्रेणी में आते हैं। बीमार में हर आयु वर्ग के लोगों की प्रतिशत कमोवेश उतनी ही है, लेकिन बीमारी की कैटेगरी देखें तो बच्चे और किशोरों में बीमारी का बड़ा हिस्सा संक्रमण और सांस से जुड़ी समस्याएं हैं। यही नहीं, मानसिक न्यूरोलॉजिकल पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ती हैं और इसका सीधा संबंध ब्लड प्रेशर और शुगर की जोखिम भी दिखाती है। ये रिपोर्ट बता रही है कि खान पान और वर्तमान जीवन शैली और यही नहीं, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी है। हम क्या उगा रहे हैं, कैसे उगा रहे हैं, फलों को कैसे पका रहे हैं, कैसे समय से पहले इसके उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, किस तरह सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये सब एक सवाल और बड़ा सवाल है। बीमारी जो भी इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, फिलहाल इस चीज के साथ आपका मंथन होना।

see our

था 12 मई 1882 को करें तो आज उनकी भी जयंती है, उन्हें श्रद्धांजलि है, इस संसार को माफ कीजिएगा, उनका स्मृति दिवस है। 1993 को इस संसार को उन्होंने अलविदा कहा था। आप आधुनिक हिंदी कविता में एक विशिष्ट कवि के रूप में स्थापित हैं। निरंतर प्रयोगशील रहने वाले निबंध, कहानी और जैसे विकास

और चीन ने 25,000 से समा दे इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक, जब हजारों लोग लापता हो गए, लाखों बिखर हो गए

आकाशवाणी जमशेदपुर का व्यवस्था से।

क्षेत्र में अब बात करते हैं भविष्य की योजनाओं की। श्रोताओं, निकट भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बार बार यूपीआई पिन

फीचर लॉन्च कर सकता है जिसमें ऑफर्स और कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूपीआई पेमेंट क्रेडिट कार्ड जितना हो जाएगा। नई तकनीक में यूपीआई अकाउंट मर्चेंट ऐप पर भी आप कर सकते हैं। पेमेंट के लिए सिर्फ फेस आईडी या फिंगरप्रिंट जरूरी होगा। एनपीसीआई का लक्ष्य ऑनलाइन पेमेंट को ऑफलाइन पेमेंट जैसा ही पहुंच बढ़ाना है। यूपीआई के जरिए बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, यूजर सीधे ऑथेंटिकेशन पेज पर पहुंचेगा, जिससे चोरी खत्म हो जाएगी और ट्रांजेक्शन फेल होने पर जोखिम भी कम होगा। इसलिए करते हैं लॉन्चिंग का इंतजार। जी हाँ, एनपीसीआई का मास्टर प्लान बिना पिन यूपीआई पेमेंट।

विशाल और राहत फतेह अली खान की युगल करेंगे। सजीत को रचा था सबीर अहमद ने और संगीत था हिमेश

dependemos de Jesus.

लग ही नहीं रहा ना कि हम मई महीने से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, मई का महीना अंदाजा लगाइए और अपनी याददाश्त पर जोर डालिए कि ऐसा होता था मई के महीने में। क्या मई के महीने में बारिश हो रही थी? हम इन दिनों देखते हैं मई के महीने में बारिश हो रही है, हम ठंड और सुकून महसूस कर रहे हैं। जहाँ मई का पारा 39 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था, इस बार तो 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा ही नहीं रहा है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 10 साल में ये पहला मौका है जब मई में गर्मी की उफ नहीं बल्कि ठंड की है। दरअसल मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बंगाल की खाड़ी

सेहत पर इस बात पर जरूर पड़ा है। शरीर की बदलती होती है, मौसम का लुत्फ उठाते रहिए।

Jesus, please have some benefits.

first time I've heard about it. There are some features that are similar in the first thing for me to get about the other. अपनी सुविधा के अनुसार कुछ लोग कभी भी और कहीं भी ट्रेन रोक देने की एक्सप्रेस और शेड्यूल जो है समय सारणी जो है वो बिगड़ रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई केस भी दर्ज किए गए हैं रेलवे आरटीओ द्वारा और आरोपियों को रेलवे कोर्ट में पेश कर जुर्माना और चेतावनी के साथ छोड़ा भी गया है। मित्रों ऐसी ऐसा काम जब कोई करता है ना तो उन्हें रोक के चलता है क्योंकि फिर ट्रेन सही समय पर न चल पाती है और न ही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है और उसकी समझदारियाँ भी होती हैं। दरअसल जब ट्रेन पुलिंग होती है ना तब किसी चीज से प्रेशर रिलीज होता है और पहिए जाम हो जाते हैं और इसे दोबारा शुरू करने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय

जब आप सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो मन ही मन उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए और देना भी चाहिए, क्योंकि रात होते ही हम तो कंबल तान कर सो जाते हैं, पर जो ड्राइवर और वो कार आंखों में तेल डालकर रात भर ट्रेन को मेंटेन रखकर आगे बढ़ते जाते हैं और समय पर हमें हमारे गंतव्य

पब्लिक फिल्म का गाना था उदित नारायण, सुनिधि चौहान और मेहरा जोशी की आवाजों में। गुलजार के बोल थे संगीत राजशंकर एहसान लॉय का। मित्रों, हम अक्सर अब QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए तो सबसे आसान और फास्ट तरीका है। पर क्या आप जानते हैं कि QR कोड स्कैन करना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सत्ता भी बनता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की ताजी रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 की पहली तिमाही में QR कोड आधारित फिशिंग हमलों में लगभग 146% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जबकि फिर ईमेल का विश्लेषण किया गया तो साफ दिखा गया कि साइबर हमलावर अब पुराने तरीकों की जगह QR कोड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या करता है। इस प्रकार आप एक साइबर सुरक्षा है कि फिर से भेजने के बजाय ईमेल या पीडीएफ में QR कोड भेजते हैं। यूजर जैसे ही मोबाइल से इसे स्कैन करते हैं वो सुरक्षित सिस्टम के घेरे से बाहर हो जाते हैं और सीधे फर्जी वेबसाइट पर

क्यूआर आई इसे भी जानना पड़ेगा। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रयोग कीजिए और अपने सिस्टम में अपडेट करें।

0: शून्य शून्य 1 4 2 4 2
1: ओ आकाश शून्य

स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने से।

गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज़ में अनजान ने इस गाने को लिखा था, वक्ती लहरी का संगीत।

the end.

पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। अंजी हस्पति ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश के सभी विद्यालयों के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा ऐसा अवसर और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतर।

सागर का गाया हुआ शाहिर लुधियानी जी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते

में अच्छे तरह से इन चीज़ों को मार दें और साकार करने का अवसर दिया। मेरे पास मैंने किसी उड़ान मौसम परिंदे उड़ान मौसम और दिल्ली म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। किसी शायर के साथ नहीं हुआ,

एक ही आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना। एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट शान सिंह। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूं के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

छोटी आवाज में सफेद बदलने की रचना रवि किया संगीत और फिल्म की दो बदन देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का चित्र करते कुछ सुरीले गानों

0: लता मंगेशकर की आवाज गुंजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में। इस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश
1: कार्यक्रम अधिशासी नवीन कुमार शर्मा ये हम लोग उनके लिए है, पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए है। कार्यक्रम और प्रोग्राम के लिए आपको हमारे जितने भी कलाकार है

की मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जादू की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बचे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दो दुनी चार

देश की सुरीली धड़कन दिव्य भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अब शुरू होते हैं सुरीला सफर के साथ।

नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं शिपाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द सुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आस पास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुँचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुँच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं। और वैसे शब्द

शांति शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं दिखती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाँव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम रात आसमान ख्वाब उम्मीद चांद चिमचिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुँच चुके हैं आप लोग।

कॉमन चीज में बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कॉमेंट। हमारे साथ ही दिख रही है कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के बीच जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नदी सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदों जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए।

सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं है जो प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है। वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत, सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगाते हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है उनसे, अगर ये न होते ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं

0: जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्वक निर्णय लिया है, सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
1: वहीं विधायक विधायक राजनीति में भाजपा की जीत के बाद

0: साल पर जाना जगाती बदल रहा है,
1: उसमें बोकारो भी अच्छी
0: अब वह सरकार में आदिवासी का जमीन है सुरक्षित नहीं है, ना माँ बहन का सुरक्षित।
2: पैसा नियमावली को सही ढंग से लागू राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने

Thank you.

का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना है अमेजिंग इंस्पायरिंग फिल्म के इस गाने में। साथ ही में लिखा है वाह भाई वाह अमेजिंग इंस्पायरिंग का ये जबरदस्त गीत हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर ने शर्मिला टैगोर और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखाने फरिश्ते आसमान में उड़ता हुआ आया है।

काफी दिखते हैं कि हाँ जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस जिंदगी में तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल की आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजीब सा लगता है, लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहटों और इसी को बचा कर

टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अभी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है और आपको खोजने हैं इनमें से।

स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखने को सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं।

सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम। आप आए बाहर आई और आज के कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा कॉमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द है बहुत ही सुंदरता से सुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुख से की है, जो प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विराग दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है।

की तरह या उसे संदेश बाहर बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत स्वामी आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस से घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे तो आप कार्यक्रम का आनंद लेंगे। हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा परिणाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर चिमचिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: friends and then just chatting with you.
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बात मोदी के लिए एक आइटम जरूरी है।

escucha, ¿sabes qué está cercano a eso? Pues, hombre, pues comenzamos, digamos, a realizar la estrella de ese momento. Sí, sí, ¿no? Una matricita de Calanza, felicitan un or, mucho un or. Y esto, escuelen que va a haber, dije, me llamo, si tiene gana, me dice, tiene comis, me dice, gana, no se vaya, hasta aquí pasando ya, dice, casi, hasta aquí, dije, hasta acá, bohat, bohat, dhanyavad, jo, es cariño, me, mute, jute, gano, ko, aapne, dice, na. हमारी साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फोटो खींच कर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती थी, लगती है हर रोज भी। कल ही मैंने एक फोटो खींची है, जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। लेकिन होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट के साथ ही लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के

दूसरे साथी दिखते हैं कि ख्वाहिश की पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मानूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिखर गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाए। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछिए कि इंसान की जिंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस पूरे रहिए विविध भारती के साथ। सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार

आज अपने समय से उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये

रहे थे और हमने पूछा था फिल्म का नाम आप सभी ने लिखा हरीश चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरीश चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे जल गई।

सभी को नमस्कार और सभी भी दर्शन के लिए इस विशेष नए निराली मनोरंजन कार्यक्रम श्री सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है। और दोपहर की खिलखिलाती धूप में ये गीत झंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी में अपनों से प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है।

के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है और हमारे साथियों में बहुत सारे गाने व लिखे ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं।

और आसमान तारों से भर जाता है। तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आपकी आपके दिल को सुकून देती हैं, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए। किसी किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। जैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और जरा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपके दोस्तों में मिल चुका है, बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है। इसके गीतकार और संगीतकार कौन है, सुनिए जरा।

से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सभी ने इसका फन भी बताया कि किस फन में ये पिक्चर आई थी। तो बधाई है गीतकार भरत व्यास और संगीत बसंत देसाई का था और इसमें गायक पर थे तलक महमूद और लता मंगेशकर थे। हमारे साथी लिखते हैं कि सूरज दे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम जहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिचंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं कहीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं उससे अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूँगा। मैं उससे कहूँगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूँ कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो मुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फराहम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रही हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत सी कुछ लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़ कर नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में सिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और जिंदा का सब कर करते रहें। साथियों, बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ नहीं होते लेकिन हाँ

रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं जरा बताइए, और बात चली है एक शांति तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

की आवाजों में हमारे साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत संगीत राहुल देव। शायद उन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही है, एक ही समागम है। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। इस साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा यादगार शाम 27 मई 2016 की है। 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बेटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखेगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की है बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिपकती चांदनी से झुलती शाम है, संग सजाने रात रानी की महक हो इसी बहाने मेरे चेहरे।

दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है।

0: estación de la Dominicana.
1: Y no te quiero.

एक साथ ही लिखते हैं कि सूरी का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर क्या समाप्त हो ही गया, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप पढ़ने के लिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली।

अपने परिवार से दूर होते हैं। ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती है। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मान्यता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती है परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेज को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

आदित्य शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय स्वर्ण सैंटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल खेल में आसाम गुजरात टाइगर्स का मुकाबला सनराइजर

को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के बीच तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसी के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्ष

भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद

ਰਾਮ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਲੀ ਔਰ ਅਜੰਤਾ ਨਿਊ ਅਸਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗੁਲਬੋਰਾ ਔਰ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੇਪਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚਰਨ ਬੋਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में इंडियन सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री

बोल पाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की टीम आज मध्य ग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटना

school of HMS went up on to a monthly to give the school for the contest in the Nidhichale ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विधानसभा के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से प्रेस की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक की बैठकों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को

खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस

1940 आतंकवाद अतीत की खराबी और बाएं पंथ में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे में सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से

की संभावना व्यक्ति है। असम और मेघालय में मूसर हर वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल के ढाई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। घरेलू शेयर बाजार की समृद्धि सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक बढ़कर 75,967 पर, जिसकी निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर

साक्षरी लगी तो आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम भवन की रचना थी चित्रगुप्त का संगीत, ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा। लेकिन अगला गाना सुनने से पहले

आश्रम 10 साल जयपुर में सेटल किया तो पुनर्वसन का दौर था हमारा विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था टीम का जॉब भी जिसने मुझे इसके तरह से इन चीज़ों को हमारे और साकार करने का अवसर दिया मेरे पास घर की जुड़ान बाकी है और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गई कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ

की आवाज जावेद अनवर के बोल उषा खन्ना का संगीत आपने सुना। शब्दम फिल्म का गाना और प्यार में कुछ कसमें होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

भागों से मुकेश कानी ने कमर जलाना बाबी के बोलों को सुरों में ढाला था। संगीतकार ओपी मैयर ने और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना, दिल अपना और खेत पराई फिल्म से आई।

कॉलेज है जहाँ पे कि कोचिंग सेंटर है, तो उन सभी जगहों पे हम लोग ना नहीं हो, छेड़खानी की घटना नहीं हो, हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से पुरुष से भी जो उनकी सहायता लेना चाहते हैं

0: दीपम मिश्री और संजय वर्मा का नमस्कार और साथ में हल्दी नमस्कार भी।
1: ये हल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ,
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आग खिचड़ी का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से ध्यान रखिए। और खास तौर पे हमारी सखियाँ सबका तो स्वास्थ्य सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे।
1: तो इसलिए सबसे पहला ध्यान दीपा ने किया है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आए कि मैंने कहा कि वे महिलाएं जो है सबका ध्यान रखती है। और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं,
0: हाँ,
1: और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और खासतौर पर जब एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता
0: है। हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है। ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में ये नहीं, और ये जून का महीना है इसमें ये सब चीजें चलती है। और देखो फिर यादें भी तो वही बनती हैं। कितनी बातें हम समझोते हैं, कितनी हमारी जब यादों की गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर टेंशन।
1: हालांकि समय बदल रहा है, पहले एक ही पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने भी हम नानी के घर चले जाया करते थे। आज तक क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियाँ आई हैं बच्चों के, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चल ही जाते हैं, किसी न किसी रिश्तेदार के घर या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहाँ जब उनका काम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहाँ हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सोचों के क्या अनुभव है, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, कुछ झंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं। उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करते हैं।

0: बड़ी बात कहे जाते थे, सही ऐसे शब्द होते हैं, यानी कि सौ सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
0: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में। कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिल रही हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।

व्यापार शुरू कर रहे हैं, घर पर बैठे कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ घर को सजाने वाली चीजें बन रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर हम बात करेंगे और फेसबुक पर हमारी सबसे देखती भी है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी वेनिता सिंह के बारे में, जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है। आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए, किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें और सारी जानकारियाँ देंगी। इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी है, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत

0: और गर्मियों में खासकर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग की जो उसकी पत्तियाँ होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी दिखी होती है, सच में ऐसा लगता है पत्ते उसके ऊपर चले नहीं और गर्मी से राहत ले जाती है। तो भाई ये सुकून सही नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे। सही बात है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो हमारा यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयास में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
0: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोकते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है, तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोका है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है।
1: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा कर के देखते हैं एक दूसरे से, और इतना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। सब सोचिए जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बगीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं गए किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को पेड़ के।
0: पर जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा कुछ पा लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में कुछ पा लें। और
1: रस्ते की निशानी बन जाता है, हमें तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, कई बार ऐसा होता है।
0: ये निशानियाँ बनाने के लिए या उस वो छाव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा का उसका काम करता है, जिस तरह भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियाँ घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती है,
1: बिल्कुल मवेशी घुस जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है और उनको आखिर भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देखे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जब हम गाड़ियाँ वाहन बहुत सारे बढ़ रही हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्या है वो काफ़ी खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बार भी बात करेंगे।

सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो है ये हमें रूप से बचाव में बहुत सहायक होते हैं,

मैं सफाई समस्या अंतर्गत आपको इनोमिनेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की आपका परिवार स्कूल अस्पताल करके और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से ac.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल जाकर 15 मई 2026 अक्टूबर में आए तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे लोगों को सुनने में

अच्छे से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं। और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, 12 मई का दिन है

0: सेवा कार्यक्रम है ये, क्योंकि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के शिक्षा पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है और ये जानकारी हमारे श्रोताओं में भी होनी चाहिए। 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
1: तो एक नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएँ होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो छोटा साथी है वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित है।
0: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधित विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परिचिकित्सा और समर्पण को ही समर्पित है।
1: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं, बीमारी में उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त

डिग्री का प्रॉब्लम है बहुत इंडिविजुअल है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। तो अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा आप अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया मिल चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। वो मुझे लगता है कि आपको घर का होम फूड खाना चाहिए, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सरसाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उससे आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइम भी दिया जाए, और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी और फिर हर महिला को सजने संवरने का शौक होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बन जाता है। बिल्कुल। और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक है, उनकी CEO है, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी मेकअप की जीवंत दुनिया है, और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी तकदीर बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपनी पूरी शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो

0: प्रदर्शन होने शुरू कर दिया था
1: जी।
0: और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित आईआईटी मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहाँ उन्होंने बैडमिंटन की प्रतिभा से शुरू की। अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन प्रयासों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को।
1: ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर चलेगी, फिर वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन फिजिक्स का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि खास सफलता नहीं मिली।
0: लेकिन जहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ

बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप होते हैं स्किन के त्वचा के, तो उसकी पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन लेकर आई बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया। जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल चटक और अलग अलग रंगों का काजल। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खासतौर पे और देखते देखते शुगर कंपनी इसके उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के सारे सौंदर्य प्रसाधन बहुत करने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता, तो कम बजट में किस प्रकार से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है। और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व

कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिल

गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले होंगे वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देते हैं, कुछ बात इसमें ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में सौ सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं, जो किसी न किसी काम में बहुत सारा प्रयास करके असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है। बिल्कुल, एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि जो मुहावरे सुनार के जितने बनाने की चाहिए सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है। जय बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है, सौ सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती को मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हें उनसे एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से ये लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है। क्या बात है, इसी तरह से एक अन्य संदेश है, मुहावरा बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी बताता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर चलती थी।

0: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन। तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टी में दरिया से जाते रहते थे, हमारे छुट्टी जो कि वहाँ जमा उधार करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई जमाते थे, हम सब बच्चे दादी के साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में रहते हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंद्र। देखो एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है, बच्चों और परिवार का कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए। इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो

कुछ भी उन्हें मतलब कशी लगाई करने को दे दीजिए, उनकी सिलाई कढ़ाई के खा सकते हैं उसमें वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं सेंसर कि आप वो भी कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब आपको ऐसे बड़े बड़े से नाम किताब दो ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़ को आप छुपा दीजिए कहीं और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है, तो सच में हमें इतना मज़ा आता है सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना आए। और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। हमारे घर में हमारे मामा थे जो सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन पाँच पाँच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़ कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। इनके तरह से बच्चों को आगे रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बताया जाता है इसकी आदत भी होगी। वो जो पुरानी छुरी जो होती है घर में, पुरानी छुरी जिससे ज़्यादा तेज धार नहीं होती वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए भी तो बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तीखे तरीके से काटते हैं लेकिन जब हम उनको बनाते हैं उनको बताते हैं ना देखिए आपकी कटी हुई सब्जी है, बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हमने काटी वो सब बताते हैं, ये वाले देखो ये वाला शेप का मेरा है ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग। आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने के लिए कूड़े में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में पहले जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर। हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं और अभी हमारे बच्चे की छुट्टियाँ शुरू नहीं हुई हैं तो मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा हो तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी और सोचने लगे कि फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों के जो आप पास कर रहे हैं कि बच्चों से आप कुछ उनके खाने की तैयारी करा सकते, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं। हाँ उनके हाथ से उगी हुई जो चीज़ें होंगी ना उनकी बच्ची वहाँ से देखते हैं कि कैसे बड़ा होता है, वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। वो खुद पौधा लगाएंगे तो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको तो उन्हें भी ऐसा आनंद का होगा और गाँव में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है। तो सुनने गाने चलिए

चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि कक्षा से लेने हम इजाजत। सभी को दीपावली और चंद्र वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री।

किसी से मिली तो प्रण हो रहा था व्यवधातिक राष्ट्र के कारण सेवा के अंतर्गत हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के व्यवधार

0: कुछ समझना, उन इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला। ये संस्कार मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहाँ उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप अहमदनगर जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वही मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदी जी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदी जी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है और क्रिएटिव है, और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया।
1: ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है, है ना सरस्वती जी? इसी बात से आपकी पसंद का कोई गीत हम क्यों न सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट।

0: आपका किसी शादी क्या वहाँ हुई और उसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना। हाँ, आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूम कर शाम को घर लौटे
0: थे।
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि प्रदाशी ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौट गए, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो उसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटर बन जाऊँगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें कहा था। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरे

0: नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, कुछ किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे, हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जिताए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस जिताए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी। और इसी दौरान आज मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे पास थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: वो पलट के नहीं देखती थी
0: उस वक्त, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया। हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो गई

0: हुआ हो गई और और कितने साल मतलब के बाद कि मम्मी ये सब बुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है कौन सा विषय था आपका
1: नहीं मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं

मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त भाड़वा चलकर के साथ पीजीए में नाटक करता, रात भर जाते थे पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे। और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था तो उसने उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते रहो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज रोल कॉल लेता हूँ उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट होते हैं,

0: मुझे कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली। तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय से पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम अभी कर
0: जी

0: जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी मैं होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था अपलियावड और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब आपकी फरमाइश पे होता है। हेलो हरमा,
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में चाय पीने जाएं तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, आखाना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है तो। लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी लेकिन छोड़ दी, और उस वक्त मैंने वहाँ पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: जी, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं।

0: सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: तो पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया। स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें

0: उसमें से उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिक्कू भाई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नाटक सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू भाई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी कैफ ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
1: उन्होंने मेरी अनंत जो कर रहे हैं,
0: उन्होंने मेरी किया और उनको कहा कि मुझे किताब दिया गया, बोले आप गाँव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल बड़ा नर्वस हुआ, फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: रोल के लिए
0: नहीं,
1: हाँ
0: हमारे पास एक नाटक है देवंद दर्जी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर, विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, अब अच्छे एक्टर हो कि चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है डायरेक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हम। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक एक हमें हो रहा है। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, गुरुवांशी जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आए
1: जी।
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में
2: आया। अपने रेडियो सेट पर आपके न्यूज है विविध भारती का प्रोग्राम लोन की सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर, आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत है
0: और नीचे छोटे छोटे

0: से करने लगे हैं।
1: अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नजर में रहता है वो आदमी सदाची, उनको लेकर आओ ना। आप किसी इंडियन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव आमरा प्रकाश। तो वो दो मिनट तक मुझे घुसते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं।

0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो डायरेक्टर जी मुझे देख कर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त तो मुझसे बात करने की दिक्कत रह गया। हाँ, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमला का कॉन्टेक्ट के जो औरंगाबाद से वो जो है उनके एक्टिंग स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उससे पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा, अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं

0: आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई। उसके बाद मैंने वेंकटेश जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक। वो यात्रिक नाटक मैं छविल्लास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी आईएनटी इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की। उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, सब नाटक किया। और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूँ तो डायरेक्टर से नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका कदम शब्द है। और इस तरह मेरी गोविंद निकाल से पहचान हुई। वो मेरा हैंडसम नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, तीन दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे हैं, ढाई तीन सीन गए हैं, हमें पसंद नहीं आया। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो ऐसे एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में छह महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपकी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गया।
0: जी सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गाँव गया और उस वक्त मुझे वहाँ पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उसने उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात ये हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है

0: शक्ति को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डाले। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी हैं, हीरो भी है। और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया। और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे, तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ। काफ़ी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के, उस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ,

0: चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बस में बदल जाने के बिल्कुल लोगों को उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ।
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी महारानी की, वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश पंत और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनुक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना, महारानी का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी बेहतर पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिट के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ, बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसकी एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूँ। और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन बच्चा बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले।
0: जी जी,
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था।
0: मुझे ऐसा लगता है कि आप
1: टाइप करना था
0: कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो भी आपका इसमें हुनर।
1: तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा, क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं, ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है वो यादगारें हमें काम आती है
0: जी,
1: वो बहुत बढ़िया होती है
0: जी।
1: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है, वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगार एक हिस्सा हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हम उसे एक्टिंग करवाते। ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत, देखने ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूँ और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराज

0: इसीलिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखे थे?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर रविवास शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है। मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो। हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उसको समझ में नहीं

0: देखो संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अब ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे और जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे। और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक चिमनागार नाम का नाटक लिखा।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ, तो काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है,
0: बहुत

0: आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। आगे जाती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। इस प्रोग्राम में अभी आज सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्वतंत्र अमरपुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।

बाइक सवार एक व्यक्ति से दायर हुआ है और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर के दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी।

the hills of Mahe. Or if you're talking

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के मुख्यांश। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के जगत भारती केंद्र से।

26 पर का ये विविध भारती केंद्र है एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 मिनट से रहे प्रोग्राम और ये वक्त है महफिल प्रोग्राम आज की ये सुहानी शाम सुकून और आराम देगा। इसी

की नकली पुलिस ने बेहद खूबसूरत बताई। और अब सुनते हैं नासिर काजमी की शायरी। दिल में एक लहर सी उठी है कभी, कोई ताजा

खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में। आज

0: दिल भी, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए

हमारे जिले के सुनहरा भविष्य और सुशील योजना निर्माण के लिए हमने

माटी के सुगंध है। वहाँ की हवाओं में विद्यापति की कविताओं के सुगंध है और वहाँ के मित्र राम सीता के पवित्र हैं। विद्यापति की कभी हम आपको सुनवा रहे थे नवीन कुमारी के स्वर में, आप ही के स्वर में सुनते हैं अगला नाम लीजिए।

0: आपके द्वारा जो जानकारी के आधार पर भविष्य में स्कूल अस्पताल सड़कें सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 अक्सर बनना है तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहर भविष्य और सुदृढ़ योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात धन्यवाद।
1: लेकिन नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल अस्पताल सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपने ये पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए

फिर वहाँ दे रहा है कि लोग स्टैटलेस डिफिक्रम की बच्ची

वाक्य से अनुरोध करता हूँ कि वक्ता वर्तमान में चल रही बारह की जनगणना 2022 में के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कों और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से ac.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल आपके लिए 15 मई 2026 तक स्वगणना है तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारे पास हिस्सा है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात

ben sana gidiyorum.

अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनसीसी द्वारा खर्चों का मूल्यांकन करने के बाद

कि अगर हमने इलाके में जो पानी और बिजली को मांग को लेकर को लोग उतरने का काम किए हैं और उसी प्रकार का देश में रात में बनी हुई है और प्रत्येक प्रशासनिक जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता सड़कों को उतरने का काम किया है। लेकिन सरकार को मतलब नहीं है

Grazie.

0: sí empezar en Chivas, sí.
1: ¿Hasta entonces?

0: 10 साल जयपुर में जीवित किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विजित भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का फंडिंग दौर था, टीम का जवाब भी, इसलिए मुझे इसके तरह से इन चीज़ों को आवाज दें और सरकार से देखा अवसर दिया।
1: कुछ
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी है, पर इंडिया उड़ान बाकी, और जब जिंदगी जिंदगी के साथ शुरू हुआ कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ,

0: सुनवाते हैं मदन मोहन खन्ना के लिखे चलती विश्व प्रेमी सम्मेलन निर्देशक दीना नाथ।
1: अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अरे अरे अरे अरे है? अरे सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ तो एक शानदार पंडाल भी खड़ा हो गया। तो क्या यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है? लहरों के मेले में सम्मेलन जैसी गंभीर चीज का क्या काम? लेकिन चलिए पंडाल के बाहर लगे इस बोर्ड को जरा पढ़कर तो देख लूं। मोटे मोटे अक्षरों में हमारे मित्र मदन मोहन खन्ना लिख रहे हैं विश्व प्रेमी सम्मेलन। विश्व प्रेमियों के सम्मेलन में मैं आप सब डेलीगेट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, ये पहला अवसर है कि संसार भर के प्रसिद्ध प्रेमी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। हर प्रेमी को इजाजत है कि वो दिल खोल कर अपनी दास्तान गम सुनाए, ताकि संसार सुने और देखे कि उसने दो दिलों को ना मिलाकर क्या जुल्म

0: कोई मामूली आंसू नहीं होते, एक एक किलो का आंसू होता है जनाब। रोने पे आए तो नदियां बहा दें, पंडाल में कहीं बाढ़ ना आ जाए इसलिए पंडाल के बाहर आंसू खाने यानी वीपिंग बूथ लगाए गए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर प्रेमी स्वयं स्टेज पर आकर अपना परिचय दे।
1: जी मैं फरहाद हूँ।
0: दोस्तों भाइयों, आपके सामने विश्व के प्रसिद्ध प्रेमी फरहाद खड़े हैं। खोदा पहाड़ निकला हुआ वो भी मरा हुआ।
2: आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ भी न मिला, पहाड़ खोद कर उसमें मैंने नहर बनाई।
0: अकेले?
2: जी हाँ बिल्कुल।
0: और साहब अंदाजा लगाइए मेरे पास पैसे यानी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। क्या पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट या बुलडोजर अवेलेबल नहीं थे?
2: अजी साहब छोड़िए, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं।
0: ओहो, इतना बड़ा डैम बनाने के लिए कोई एक भी नहीं मिला आपको?
2: आप सहायता की बात करते हैं। खैर साहब, 20 साल की मेहनत के बाद नहर तो बन गई, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
0: वो क्या लिखा?
2: मुझे हुक्म हुआ कि मैं नहर में पानी की जगह दूध डालूं।
0: वो किस लिए लिखा?
2: ताकि शर्त के मुताबिक वो मेरी बनाई हुई नहर में नहा सके।
0: ओ आई सी, दूध में नहाए।
2: हाँ, ताकि दूधो नहाए और पूतो पले।
0: मिस्टर फरहाद, चीनी के डैडी ने आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा?
2: मैं क्या बताऊं साहब, मैं चीनी का प्रेमी हूँ, चीनी का डैडी नहीं।
0: आई एम सॉरी। ऐसा साहब ठीक क्या भैया?
2: अब और कुछ नहीं कहा जाता, कलेजा मुंह को आता है, बेसाख्ता मेरी जबान से शेर निकला ही चाहता है। मर जाएंगे पर हम कभी शिकवा न करेंगे, कर देंगे मगर यार को रुसवा न करेंगे, हम हस्त में इस खून का चर्चा न करें।

0: मुझे उसको मिलना था, मैं कोई मछली ना पकड़ सका। बस चला, मैंने अपनी जान काट कर कबाब बनाया और अपने हाथों से स्वामी की नजर की।
1: लेकिन समय बाद जब सोनी आपकी दीवानी थी तो फिर आपको समाज का खराब कैसे?
0: आप सुनिए तो सही, सोनी की ननद को मारा मिलना ग्वारा नहीं। उसने हमारे खिलाफ एक बड़ी खतरनाक चाल चल ली। धोनी के दरिया पार करने वाले पक्के कड़े की जगह और उस कंबख ने कितना कड़ा रख दिया।
1: ओह वेल, मिस्टर महिवाल, क्या मिस सोनी को तैरना नहीं आता था?
0: जी नहीं।
1: ओह व्हाट अ पिटी, तो उसके पास स्विमिंग बैग भी नहीं था। बिल्कुल का इंतजाम कर लिया होगा मैं। वेल, फिर क्या हुआ?
0: फिर वही हुआ जो हम जैसे प्रेमियों के साथ होंडा आया, वो डूब गई। मैंने दूसरे किनारे से छलांग ही लगाई पर वो साइन पहुंच न सकिया और हम दोनों कट्ठे इस जालिम समाज के पंजों से आजाद हो गए।
1: आपने तो मरकर दुनिया से खलास पाया, मगर हमारे साथ जो समाज ने जुलम किया वो आप सुन भी नहीं सकेगा।
2: अभी आप सुनाए, हम कब सुन लेंगे?
1: आप है कौन सा और कौन सा जवाब कर रहा है? जी मैं रोमियो।
2: रोमियो भाइयो, प्रेमियो, सुनिए, अब आपके सामने यूरोप के प्रसिद्ध प्रेमी रोमियो खड़े हैं।

0: का सौदा आइए मजनू साहब मंच पर आइए यहाँ तक सोच आइए तो हाँ और अपने लंबे आज की तजुर्बे से उसको याद कीजिए
1: आइए।
0: मुझे
1: लाला मिला जी
0: देखिए मिस्टर कैश

0: एक 40 की लड़की जिसके लिए आपने दीवानेपन का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, आखिर उसमें क्या फायदे की बात है?
1: मिस्टर रोमियो और लैला के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोल सकता। लैला की खूबसूरती देखती है तो मजनू बन कर दे, मजनू की निगाहों से देखो साथ बजा कर नहीं।
0: देखिए समझ लो, मेरे साथ के बारे में कुछ ना कहिएगा, मैं अपने साथ के बोल अपने निकाल सकता हूँ।

0: कहा कि जूलियट को कोई छीन नहीं सकता और मजनू भाई लैला केवल आप ही की लैला
1: कहो है मेरे लैला

0: सम्मेलन का वातावरण फिर गंभीर हो गया है। मैं देख रहा हूँ कुछ प्रेमी आहें भर रहे हैं, कुछ प्रेमी रोने के मूड में है। मुझे भी 2 मिनट का अवकाश दीजिए, मैं जरा आंसू खाने में जाकर दो चार आंसू बहाना चाहता हूँ।
1: आपको किसकी याद में आंसू बहाना है
0: जी?

0: तो हम भी देख रहे हैं।
1: तो जाने दीजिए ना।
0: आपको कहाँ जाना है?
1: स्टेज पर।
0: क्यों?
1: प्रेमियों के पास।
0: आप इनमें से किसी की प्रेमिका हैं?
1: जी नहीं।
0: तो आपको इनसे क्या काम?

0: dann diese Kirchenrichtungen. Schmeralden. Und was soll das? Und meine Instanz war abhängig. देखिए मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है। मैं फरहाद हूँ, मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ है कही।
1: तो मेरी जी और मुझे दस्तखत करने तो नहीं आते, पर अपनी आटा विरास वाली किताब पर मरहम उठाई लगा लो।
2: साहब मेरा मतलब है, क्या आप आज शाम फ्री हो?
3: मैं आज शाम
0: देखिए तो क्या कल मेरे साथ कहीं कैनॉट प्लेस में कॉफी पी सकती हूँ?
3: आपके साथ कॉफी?
1: मैं क्या, हमारे साथ भी कुछ मक्की की रोटी और साग का प्रोग्राम बना
3: रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं?
0: कोई बात नहीं, डिनर के लिए भी नहीं, आपको डांस के लिए हम अपने आप को पेश करता है।
3: आपके साथ डांस? मैं कुछ समझी
0: नहीं। हम आपको वो नगमा सुनाऊंगा जिसे तुमको जूनियर खेल की चाहिए।
1: आपने कहा

0: बस माय मॉडर्न प्रेमी भाई, ये कौन सी किस्म हुई?
1: मैं आज की किस्म का प्रेमी नहीं, एक खूबसूरत लड़की देखी ऑफिसर का।
2: तो मुझे मालूम न था कि आजकल प्रेमी भी नकली बनने लगे हैं, उनमें भी और चीजों की तरह मिलावट आ गई है। कहाँ गए वो खालिस प्रेमी और उनका अमर प्रेमी?
0: चलो रिसर्च करो, ये सब ढूंढ।
2: चलो जाओ,
0: सब प्रेमी नकली।
2: और सब प्रेमी सुने, मेरा आज का लंच, इवनिंग टी, डिनर और डांस सब मिस्टर कुमार के साथ है।
1: मिस्टर कुमार के साथ?
2: जी हाँ। अब आप इत्मीनान से पंडाल से बाहर जाकर आंसू खाने में अपनी अपनी प्रेमिकाओं को याद करके खूब आंसू बहाएं। हमें इजाजत दीजिए, हमें आपके तजुर्बे से कुछ नहीं लेना। बाय
1: बाय।
3: प्रेमियों आइयो आइयो, सब आंसू खाने में आंसू।
4: विश्व प्रेमी सम्मेलन मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे दीना नाथ। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

सर्दी के देश में ढोल कैसे ही यात्री और संगीत प्रदान करते आवाज शास्त्र सिंह की फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी

में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिरछी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त सीरियल फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नाम जीना

0: नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता मणिपाल ने छोटी वाडिया, जेडीएस वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया।
1: कुछ भी नहीं

0: अभिनेता मणिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: मारी

वही पाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आसमान, तुलसीदास, अलीबाबा और चालीस चोर, अल्लाहीन और जबरू, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन,

तो दीवानी होती है। पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में

0: कैसी बताओ
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास से वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो उनसे की दीवार
0: अभिनेत्री बगीचा से
1: और बीच में गैप था लिटरली जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए गाते गाते आप इस दीवार की जाँच में जब कर जाए मैंने कहा कोल्डी ये क्या जागृति है भाई मैं भाग रही हूँ और जब भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है ये कैसे हो सकता है बड़े टेंशन में वो शॉर्ट था।

राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम में

सार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। गहराई घटाए काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक गर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

हैं लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द कुछ खामोश अफसाना मशहूर के दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

पांव को दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी जब हर सुबह हरे रंग को पसंद

एक कहानी है, एक राज है मोहब्बत, एक छंद है मोहब्बत से है, वो नफरत की जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है उसे खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।